कदीम तरीके तक जानू कदीम का कदीम सजनू तक दीम तरीके तक जानू कदीम का कदीम।